0: क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: अमरीकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो पर मीडिया मूजिब ठहराव 47 वोटन के मुकाबले में 50 वोटन से मंजूर थियो। जंग सबब अमरीका समेत सजी दुनिया की मईशियत के वो झटको लगो है। पर मीडिया मूजिब सेनेट बाद ठहराव अमरीकी ऐवान में पेश कर वो है। हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है वो भी इम्कान जाहिर किया पो वे तो ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमरीकी ऐवान में भी मंजूर किया वो।

0: ईरान जल्द मुआदो न कयो त ॿीहर जंगी मुहिम शुरू करे सघूं था। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जी धमकी सदर चवण आहे त असांखे सदर डोनाल्ड ट्रंप नेक नियत सां ॻाल्हियूं करण जो चयो। ईरान पारां डील में देर जो मक़सदु इहो आहे त ईरान मुआदो नथो करणु चाहे। ईरान खे एटमी हथियार रखण वारी शर्त तां हथ खणणो पवंदो न त मुआदो न थींदो।
1: हक जी जंग में पाक फौज दुश्मन के मुंह ट्रोड़ ए न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाने दुश्मन करे भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से डिसण की हिम्मत न कदो। ईरान तकरार पूरे खिते के गैर यकीनी वाली सूरत हाल ए मुआशी कमजोरी में दिखे छो। पाकिस्तान की सफारती कोशिश के नतीजे में अमरीका ए ईरान चंगबंदी जो ऐलान कियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कोटिया में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी ए तरबियत हेठ आफिसर के खिताब। शहबाज शरीफ चो तो पान के ताकतवर समझदड़ दुश्मन के जंग का सफारती मैदान में भी शिकस्त नसीब थी ए पाकिस्तान के मौकफ के दुनिया तस्लीम कयो। पाकिस्तान फलस्तीनी आवाम के हक की लागीतो वकालत कई है। वालारियल कश्मीर वासन के इखलाकी सियासी ए सफारती हिमायत जारी रखासी। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्द टोलन खिलाफ असरायता कदम खड़ा पवंदा।
0: बलोचिस्तान में चिटादार अमलाए अवाम दोस्त पॉलिसी ए बेहतर हुक्मरानी अचर आए। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश फौज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरअज़्म आए। पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरअज़्म आए। पाकिस्तान की तरक्की के प्रोपोगंडा या परदेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी जरिए रोके नथो सके। जदीद जंगी तरीकेकार तेजी से तब्दील थी रो है। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मची जुमैन ऑपरेशन्स ए टिन्ही फौजन में गडल सहकार से जोर भरियो।

0: सिंध में पाणी जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफा गैर कानूनी लिंक के नासर ही पाणी खणण जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदन आबपाशी खाते मामले से खामोशी अख्तियार कर वरती। जरिए मुजिब पंजाब सी जी लिंक केनाल जरिए 10,000 क्यूसिक, एनटीपी लिंक केनाल जरिए 8,122 क्यूसिक पानी गुजरियल 4 दिन का रोजानी बुनियादन से खणी रो है। सिंध में पानी की सख्त खोट बावजूद इरसा में मौजूद सिंध नुमाइंदन आबपाशी खाते कें भी किस्म जो एहतजाज न कियो।
1: सिंध असेंबली सरकारी नौकरी लाइ उम्र की हद में 15 साल रियायत देने वालों ठहराव रद्द कर छो। एमकेएम के शबीर कुरैशी पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत मुखालिफत कई। घर वजीर ज़िया लंजा चे तो सुप्रीम कोर्ट 15 साल वाले उम्र की रियायत खत्म कर छी है, रुगो 5 साल रियायत दई सके थी। अदालती फैसले से अमल कर पाबंद आयु। सीनियर वजीर शर्जील मेमण है तो पीपुल्स पल्स सर्विस भी समूरी सिंध में हलई वी, कराची की बेहतरी से भी ध्यान है।
0: सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन 22 भारतीय हामी खारज की दहशतगर्द मारजी व्या। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजिस्तान के इलाके शेवा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन दौरान खारजन के ताकन के असरायत अंदाज में निशानो बनाए वो। फायरिंग की डेवट में भारतीय हामी 22 खारज की दहशतगर्द मारजी व्या, हथियार ए बारूदी मवाद भी अटके वो।
1: पीपुल्स पार्टी अछावी आइनी तरमीम के मीडिया जो खबरों करार दई छड़ियूं। एमकेएम पारा मकानी इदारन के खुदमुख्तियारी बढ़ाने वाली शक शामिल होने की सूरत में तरमीम की हिमायत जो ऐलान। केटीएन न्यूज से गालाइंदे पीपुल्स पार्टी एमपीएस अछावी आइनी तरमीम जो को भी मसूदो सामू ना आयो। उ तरमीम अजा ताई मीडिया की खबरों तक महदूद है, तबसरो कजे। एमकेएम अगवान अछावी आइनी तरमीम में मकानी इदारन की शिक शामिल हूंदी तो उन हिमायत कंदा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। चेहरे से 19 अप्रैल तक 2026 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
7: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
9: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
8: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

साईं मुंहिंजा सियाणा सच चई विया आहिनि त पंहिंजे माज़ीअ खे कॾहिं बि न विसारजे, उन खे हमेशह पियो यादि कजे ऐं उन खे सदाई यादि कंदो रहिजे, छो त माज़ीअ जे तजुर्बनि मां ईंदड़ वक़्त खे बहितर बणाए सघिजे थो। टे अखर जंहिंमें ये, अलफ ऐं दाल जॾहिं पाण में मिलनि था त हिकु लफ़्ज़ यादि ठही पवंदो आहे, जेको हिकु वॾी माना ऐं मतिलब रखे थो। राति जो निंड करण खां अॻु जॾहिं असां समूरे ॾींहं जी कयल कमनि खे यादि कयूं ऐं उन्हनि ते गौर कयूं त असीं सॼे ॾींहं में इंसान ज़ात जे भलाई लाइ सुठा अमल कया या न कया। जेकॾहिं असां हर माण्हू पंहिंजे समूरनि कारगुज़ारनि खे यादि करे त ही समूरो संसार वधीक सूंहं भरियो थी वेंदो। माज़ी में जाती पवंदे जॾहिं हिकु यादि जेका विछड़ी वियल साथीअ जी बि ईंदी आहे, तॾहिं अंदर जा उधमाई ॿिया हूंदा आहिनि। पर साईं जा असां इहा ॻाल्हि कंदासीं त अॻिलो यादि करे न करे, पर असां हुन खे ज़रूरु यादि कंदा आहियूं ऐं असां हुन कॾहिं विसारियो बि न आहियूं।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: माँ खाधो गरम करे थी बैठा।
5: पुत्र, थकल थकल पी लगी घड़ी, खैरियता?
4: तवां जो पुट सुमई न थो पूरी रात, माँ तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
5: तू हाल वे माँ अच्छा तू हाल तू

0: हे वट एडियू शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माओ जी बेहतरीन गिज़ा भाव ऐं बार इन्हीं जो हक आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
0: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का

जी हा समीन, वापस अची वियो आहियूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में। ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेरापुर, मटियारी, सकरंड ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह ॿुधो पिया। ऐं मुंहिंजो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो साईं मुंहिंजा काफ़ी ॾींहनि खां, यानी काफ़ी जुदाई खां पोइ तव्हां सां हाज़िर थिया आहियूं। ऐं पंहिंजे कुझु ज़ाती कमनि कारनि जे करे तव्हां खां थोरो परे हुयासीं। ऐं हिन वक़्तु असां हिकिड़े नए सवाल सां अवां सां गॾु आहियूं। असांजे अॼु जो सवाल आहे प्रोग्राम में, त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। जी हा, असांजे प्रोग्राम में अॼु जो सवाल आहे त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे मैसेज में, इनबॉक्स में तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था। इनबॉक्स में मैसेज करण जो आसान तरीक़ो आहे, तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में ईंदव, स्पेस ॾींदव, LRK लिखी स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां असां ॾे 888 ते सेंड करे सघो था। ऐं तव्हां असां ॾे फेसबुक ID ते बि तव्हां जेको आहे सो मैसेज करे सघो था। ऐं तव्हां कॉल करे असांजे स्टूडियो जे नंबर ते पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु असांखे लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा, तव्हां कोशिश कंदव, ॾिसंदव त हिन वक़्तु असांजे इलाइक़े में, ख़ासि करे लाड़काणे डिवीज़न में, सखर डिवीज़न में तमामु घणी गर्मीअ जी जेका शिदत आहे ऐं गरम हवाऊं लॻणु शुरू थी चुकियूं आहिनि। त कोशिश कयो पंहिंजो मथो ढकियो ऐं ॿारनि खे बि गर्मीअ खां बचायो। जेके ॿार स्कूल वञनि था त हुन खे मथे ते टोपी, रुमाल ज़रूरु हुजे। ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण पाणी पीअण शुरू कंदो त कोशिश कयो पाणी घणे में घणो पीओ, ऐं ॿारनि खे बि पाणी पीआरियो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे बि पाणी ज़रूरु पीआरियो। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे अञा बि सवाबु खटणो आहे त कोशिश कयो मशरूबात ऐं पाणी जी जेको आहे सो काफ़ी जॻहनि ते तव्हां पंहिंजो दिला रखो, मट रखो, ऐं थधे पाणीअ जूं तव्हां जेको आहे सो वॾियूं बाटलियूं, वॾा ड्रम रखी करे ऐं हुन में बर्फ़ विझी करे तव्हां माण्हुनि खे पाणी पीआरींदो तमामु वॾो सवाबु आहे। जेकॾहिं किथे तव्हां नलको हणाईंदो त सदका जारी आहे। कोशिश कयो त जेके असांजा पखी ऐं जानवर आहिनि, बेज़बान आहिनि, उन्हनि जे लाइ कुझु हौद ठाहियो, उन लाइ नंढा पाटला ठिकर जा रखो ऐं वणनि जे हेठां रखंदो त जेके पखी आहिनि उहे पाणी पीअंदा, जेके ढोर ढग आहिनि उहे पाणी पीअंदा, तव्हांखे सवाबु तमामु घणो। कोशिश कयो त हिन गर्मीअ खे बचण लाइ तव्हां पाणी जो घणो इस्तेमालु कयो, मशरूबा जो घणो इस्तेमालु कयो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मोरो के हो तो आवाज भी मोरो की है, सुनते रहो GFM 88।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
5: जेकर

के प्रोग्राम कोन पे ॿुधनि या जेके नवां दोस्त आहिनि, असां हुन खे हिकु दफ़ो नंबर वरी ॿुधाईंदासीं। त असांजो नंबर आहे 0332 1322888। समय वरी हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

0: जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबुह में तवां जो असांजो साथ रहंदो ठीक गुजारे वक़्तु ॾिनो ॾह थियनि पिया हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं मुंहिंजो असांजो सुवाल इहो ई आहे त सिज ऐं चंड में जे विच में मुफ़ासिलो केतिरो आहे
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: अमरीकी सदर ट्रंप जो ईरान जंग जल्द खत्म करण जो ऐलान ईरान ते ॿीहर हमला करण जी बि धमकी तकरीब के ख़िताब कंदे ट्रंप चयो त ईरान जंग बाबति मस्बत अकबराई थी आहे ईरान खे कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार रखण न ॾींदासीं ईरान जी नेवी फिज़ाया फ़ौज खे ख़तम करे छॾियो आहे ईरान जंग जल्द ख़तम करे छॾींदासीं अमरीका में $18 trillion सड़पकारी कई आहे एतिरी सड़पकारी तारीख़ में कंहिं बि मुल्क नाहे थी उन खां अॻु व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप जो चवण हो त ईरान ते ॿीहर हमलनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी ईरानी क़यादत डील लाइ मिनतू करे रही आहे डील न थी त हमलनि खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचंदो ॿिनि या टिनि ॾींहनि अंदरि या ईंदड़ हफ़्ते खां ईरान ते हमला करे सघूं था ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची ख़बरदार कयो आहे त अमरीका ॿीहर जारियत कई त सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद वधीक हैरत अंगेज रद अमल ॾिनो वेंदो ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबाद जो चवण आहे त कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं अमरीकी धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे ईरानी ख़ातम उलंबिया ब्रिगेड चयो त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रेगर ते आहे हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी तकड़े फ़ैसिला ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी रूस जे सदर प्यूटन चीनी सदर शी जिनपिंग सां बीजिंग में अहम मुलाकात कंदो ॿ तरफ़ा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं आलमी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी रूस जो सदर वफ़द सां गॾु गुज़िरियल ॾींहुं ॿिनि ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन पहुतो हो चीनी परॾेही वज़ीर रूसी सदर जो इस्तक़बाल कयो चीनी फ़ौज जे दस्ते पारां गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश ईरान जल्द मुआदो न कयो त ॿीहर जंगी मुहिम शुरू करे सघूं था अमरीकी नायब सदर जेडे विंस जी धमकी सां चवण आहे त असांखे सदर ट्रंप नेकनीअ ते असां ॻाल्हियूं करण जो चयो ईरान पारां डील में देर जो मक़सदु इहो आहे त ईरान मुआदो नथो करणु चाहे ईरान खे एटमी हथियार रखण वारे शर्त तां हथ खणणो पवंदो न त मुआदो न थींदो हक़ जी जंग में पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहुं तोड़ ऐं न विसरंदड़ सबक़ सेखारियो हाणे दुश्मन कॾहिं बि पाकिस्तान ॾांहुं बुरी नज़र सां ॾिसण जी हिमत न कंदो ईरान तकरार पूरे खिते खे गैर यकीनी सूरतहाल ऐं मुआशी कमज़ोरीअ में धके छडि॒यो पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिश जे नतीजे में ई अमरीका ईरान जंगबंदी जो ऐलान कयो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज फैकल्टी ऐं तरबियत हेठि आफ़िसरनि खे ख़िताब शहबाज शरीफ चयो त पाण खे ताक़तवर सम्झंदड़ दुश्मन खे जंग खां पोइ सफ़ारती मैदान में बि शिकस्त नसीब थी ऐं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे दुनिया तस्लीम कयो पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम जे हक़नि जो लाॻीतो वकालत कई आहे वलरल कश्मीर वासियुनि जे इख़लाक़ी सियासी सफ़ारती हिमायत जारी रखंदासीं अॻवान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्द टोलनि ख़िलाफ़ आसराइता क़दम खणणा पवंदा बलोचिस्तान में जेटादार अमुन लाइ आवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर हुकमरानी अंटर आहे पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा कोयटा में फ़ौजी आफ़िसरनि खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्द जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्द जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिनी फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो आहे

0: Sun Crop. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

ऐं साईं मुंहिंजा असांजो जेको सवाल आहे त उहो सवाल असांजो जेको अॼोको आहे त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे ऐं एल आर खे लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते असांखे सेंड करे सघो था। तव्हां असांजे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो नालो लिखाए सघो था। तव्हां फेसबुक जे आई डी ते बि पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी मोकिले सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। ऐं साईं मुंहिंजा चंड जे बारे में कुझु मालूमात अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ऐं असांजे सवाल जो सही जवाब बि इन मालूमात में आहे ऐं जेको अव्हां इन मालूमात जो थोरो फ़ाइदो वठंदा त साईं मुंहिंजा राति जे वक़्तु असां जे अंगण ते जॾहिं असां सुम्हंदा आहियूं ऐं आसमान ते सितारनि जी सूंह में चंड खे बि ॾिसंदा आहियूं ऐं यकीन उन वक़्तु असां चंड बाबति कुझु सोचींदा ज़रूर आहियूं त चंड असुल में आहे छा। साइंसदान चवनि था त चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाशो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियण वक़्तु 2000 मेल फी कलाक जे रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु फेरो ॾिए थो ऐं साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे। चंड ऐं सिज जे विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे ऐं चंड ज़मीन खां 2,29,857 मेल परे आहे ऐं चंड जो कतर बि 2,160 मेल आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंड में धरतीअ ते पहुचे थी। तसमिन इहा मालूमात चंड जे हवाले सां हुई ऐं असां वहां ताईं पहुचाईसीं ऐं इन मालूमात में ई असांजे सवाल जो सही जवाबु हुयो ऐं जेकॾहिं तव्हां अञा बि जवाब ॿुधण बाद बि तव्हां मूंखे न ॿुधाए सघो त पोइ उन जो मां नालो ज़रूरु न हलाईंदुसि ऐं मां तव्हांखे सवाल जो सही जवाबु हिन मालूमात में ॾेई चुको आहियां ऐं चंड जे बारे में ॿुधूं था शमन अली मीरालीअ खे त हू छा पई चवे।

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां जेको सवाल नओं सी त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। मां तव्हांखे चंड जी मालूमात में तव्हांखे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए चुको आहियां, पर पोइ बि काफ़ी दोस्त कोन था ॿुधाए सघनि त असां अव्हांजा नाला ज़रूर लिखूं पिया। असांजी मोबाइल आन आहे स्टूडियो में ऐं उनजो नंबर आहे 0332123288। साईं मुंहिंजा, जॾहिं को प्यारो माण्हू रुसी वञे त पोइ छा कजे? जेकॾहिं साईं जा प्यारो माण्हू रुसी वेंदो आहे त बेचैनी ऐं बेक़रारी थी पवंदी आहे ऐं उन बेक़रारी खे ॾिसंदे ऐं जेके पंहिंजा साथी हूंदा आहिनि, पाड़े वारा हूंदा आहिनि, त उनखे मोहबत में चाहत में चरियो बि छॾींदा आहिनि। छो त चाहत जे दरिया में अणतारू बि पंहिंजे पीरीअ जे जी चीच पकड़े घिरी पवंदो आहे ऐं उहो नाहे ॾिसंदो, नाहे ॼाणींदो त दरिया जूं छोलियूं केतिरियूं तेज़ आहिनि ऐं असांखे नुक़सान ॾींदियूं। पर हुन जे लफ़्ज़ ज़बान त हूंदो आहे पीरीअ जी सिक, उकीर, चाहत। त साईं जा पंहिंजे पीरी प्यारे जे ऐं महबूब खे यादि कंदे ऐं हुन जो जेको पंहिंजो बचपन आहे या हुन जेको पंहिंजी मोहबत जो आहे उहो यादगीरो ईंदो आहे त पंहिंजो प्यारी पहिरियों प्यारो गॾु हुजे ऐं हुनखे माण्हू मयार बि ॾेई सघे थो, पर पीरीअ जो रुसण जेको आहे उहो असांखे ॾाढो नुक़सान ॾींदो आहे।

जी सभिनी प्रोग्राम रोशन सुबुह में तव्हांजो असांजो साथ रहंदो। बाकी अधु कलाकु आहे, अधु कलाक में तव्हांखे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए चुका आहियूं, पर जंहिंखे यादि रहंदो उनखे ज़रूर ॿुधाईंदासीं ऐं बाक़ी तव्हांजा नाला खणंदासीं ऐं ख़ूबसूरत नगमा अव्हां जे नाओ कंदासीं। हिन त हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ख़ूबसूरत नगमा अव्हां जे नाओ कंदासीं हिन त हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ. मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों. ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें.
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. बुधंदा रहो.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर
1: हुआ नव करोड़ 27,72,000 किलोमीटर इो जिखी छो तीर जो है सो मालूम में तवाल कदी तवाब वरी क्लियर बुझा तो नव करोड़ 27,72,000 किलोमीटर जो सिज ए चंड के विच में मुफासिलो है। जी हाँ अवा के जान में मालूम में इजाफो क्यों पा तो सिज ए चंड के विच में जो मुफासिलो है नव करोड़ 27,72,000 किलोमीटर इो जिखी छो तीर जो है सो मालूम में तवाल कदी तवाब बुझा सको जिन दोस्तन प्रोग्राम में फोन कई असा याद किया उन नाला है जोहेब अली कटबर जैनल आब्दीन रहमतपुर लाड़काने का कुर्बान अली खासकेली झंडोमरी का मसूद जमाली फारूक जमाली बाबल कोसो लाशारी मीरपुर खास का मीरपुर खास का ही खालिक लाशारी यासमीन मलक मीरपुर खास का प्रोग्राम बुधन पाया उनकी वड़ी मेहरबानी चनेसर बेहण आजाद बेहण मोरे का आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी माहौटन का नजीर मंगरियो गुलाब खान मंगरियो नजीर मंगरियो रोहिड़ी का सोराब मंगरियो बकापुर का गुलाब मंगरियो उनसा गड आए नजर मोहम्मद मंगरियो फरहान मंगरियो तुफेल मंगी गोठ खान मोहम्मद जिंझण लगे कंगन का महबूब अली शर रिजवान अली शर इमरान अली शर थरी मीरवा का हाफिज लखमीर ढिलू मोरे का फराज अली रफीक अली सखर का दोस्त की वरी मेहरबानी साईं मुझा इन वक्त अवां जे नां क्यों पिया खूबसूरत नगमो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

जी समय साई मुझा प्रोग्राम रोशन सुबह इन वक्त पहुंचे पांजी पुजानी ते पांजी मेजबान नेमतुल्लाह जुने जो दींदा इजाजत हयाती रही तवा सा जरूर मुलाकात कंदासी तेसी तई दींदा इजाजत अल्लाह निगहबान।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अमरीका धमकी के अमन जो मुख्य उपाय पेश कर रहा है असा कें वजारत जो मुकाबलो करने लाए तैयार आयूं।

अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गालन में अकबराए की दावा तो बे तरफ ईरान के हमलन की धमकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस है तो ईरान से गालन में अहम अकबराई थी है। ईरान महदो करना चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाली शर्त से हथ खड़ो।

दरिया खान बरी वेझो नौजवान कतल घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोहल लाशारी के अणॼातल जवाबदारनि कतल करे छॾियो। लाश ख़बरनि जे वणनि वटां हथ ॿुधायो पियो वञे त रात देर सां

हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream. This program is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी बैंक
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं NICH कराची में पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रैफिक

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 12 PM. This project is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: नौजवानों भरसा गुजरल का गुमचल बिन बारन जा लाश घर की पेतिये मा थे गोठखान दिस्काणी में मासूम बाली बुरका ए बारो जमील सोमा अलकाल शाम का गुम हुआ। पुलिस जो चवण है तो बारन जा लाश घर की पेतिये मा मिलिया आहिन। वधीक जांच कई पई वञे।
1: वेचोबर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। चेकटाणा जी बीहर शुरुआत कंहिं बि सूरत में कबूल नाहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जे रूसी सदर सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी मीडिया मौजूद सरकारी दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर चीनी सदर सां सरप्राइज इजलास में शिरकत कई। रूसी सदर चयो त मॉस्को ऐं बीजिंग विच में लाॻापा गैर मामूली हद ताईं वधी चुका आहिनि। 25 वरहनि में रूस ऐं चीन विच में वापार रिश्ता में 25% वाध थी आहे।
0: अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो। पर डेही मीडिया मूजिब ठहराव 47 वोट्स के मुकाबले में 50 वोट्स मंजूर थो। जंग सबब अमेरिका समेत सजी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। पर डेही मीडिया मूजिब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवान में पेश कर वो हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर कर पे ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवान में भी मंजूर कर वो।
1: जंग में वापसी की सूरत में अमरीका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीख है उनकी मदद से हैरत अंगेज रदअमल लींदी। ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराकती जो रदअमल। ईरानी नायब परडेही वजीर काजम गरीबाबादी चवण है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। अस कें बजार जो मुकाबलो कर तैयार आय।
0: अमेरिकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अग भराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस है ईरान से गाल में अहम अग भराई थी है। ईरान वायदो करण चाहे तो ईरान के अटे में हथियार रखने वाली शर्त तहत खड़नो पवन ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कंदी।
1: दरिया खान वेझो नौजवान कतल। घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोयल लाशारी के अणॼातल जवाबदार कतल कर छो। लाश खपड़न के वणन वटा हथ बुधाए पे वे तो रात देर से नौजवान के फोन ते घुराए कतल किया वो है।
0: हिंदुन के रूहानी पेशवा साईं साधाराम जो बहणो अज सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुंचो। वारिस ब्या सोगवार वरी अंग में कराची एयरपोर्ट पहुंचल। तजवान रेहड़की दरबार जो चवण है तो बहण कराची एयरपोर्ट पहुंचने बाद एयर एम्बुलेंस जरिए सखर एयरपोर्ट आंदो वो। आखिरी रस्मू सुभाने सुबह 10 बजे रेहड़की दरबार में अदा कई।
1: बांग्लादेश के टीम बी टेस्ट मैच में भी शिकस्त ई छी। बांग्लादेश बी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 78 रनसन का शिकस्त डी। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टीम के मैच खटने लाय 437 रनसन जो टारगेट डनो हो। पाकिस्तानी टीम 358 रन सुठाए आउट थी वही। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 94 शान मसूद ए सलमान अली आगा 71 रनसन ठायू। बांग्लादेश के तजल इस्लाम 6 विकेट वी टीम के कामयाबी दियारी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। 13 से 19 अप्रैल तक 2026 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है. ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो.
3: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ. अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा. औलाद के निगहबान वालिदैन है. पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: हमलो करे सघूं था। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचियो हो, ईरान जंग तेज़ीअ सां ख़तम करे छॾींदासीं।
1: जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल लींदासीं। ईरानी परदेह वजीर अब्बास अराग़ची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदेह वजीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवण है तो अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। असा कें भी जारियत जो मुकाबलो करने के लिए तैयार आय।
0: अमरीकी

नव दंबालो भर सां गुजरलीअ खां गुम थियल ॿिनि ॿारनि जा लाश घर जी पेतीअ मां हथ। ॻोठ खान मोहम्मद इस्काणी में मासूम ॿारी मुर्क ऐं ॿारलो जमील सुमाल काल्ह शाम खां गुम हुआ। पुलिस जो चवण आहे त ॿारनि जा लाश घर जी पेतीअ मां मिलिया आहिनि। वधीक जांच कई पई वञे।

हिंदुनि जे रूहानी पेशवा साईं साधराम जो मड़ सिंगापुर खां कराची एयरपोर्ट पहुचण बाद एम्बुलेंस ज़रिए सखर एयरपोर्ट रवानो। तर्जमान रड़की दरबार जो चवण आहे त मड़ सखर एयरपोर्ट पहुचण बाद रड़की दरबार आंदो वेंदो। आख़िरी रस्मूं सुभाणे सुबुह 10 वॻे रड़की दरबार में अदा कयूं वेंदियूं।

सांगर वेझो भाव कार इल्ज़ाम हेठि भेण खे कुहाड़ियूं हणी क़तल करे छॾियो। नओं गोठ में जवाबदार 26 सालनि जी भेण खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त नारी जी हफ़्तो अॻु शादी थी हुई। जवाबदार निंड सुतल भेण खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। बिल्कुल जी, पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं बहुत सारी बातों के साथ और बहुत ज्यादा वाले अच्छे से प्रोडक्ट्स के साथ साथ। तो यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाएंगे और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनका इस्तेमाल आप क्यों और कैसे करने वाले हैं ये भी बताएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है, अपनी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो निखारते जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए हैं फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की बहनें जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला विकास आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब आज के प्रोग्राम एक बहुत प्यारी सी कसीदे के साथ, कसीदा सुनते हैं जी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपका हमारे साथ पूरे 3 बजे तक का, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है जनाब कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शंस में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद है। जैसे कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, आपको कोई फेयरनेस क्रीम चाहिए जो आप दिन में लगा सके, तो उसके लिए आपके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम मौजूद है। और साथ साथ आपके लिए डॉक्टर पिम्पल नाम से ट्यूब भी है जो कि एक्नी क्लियर ट्यूब है और ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी जनाब आप लोगों के पास जो है वो व्हाइट एज का साबुन भी मौजूद है। अगर आप सोप लगाते हैं तो साबुन लगाएंगे, सोप लगाएंगे तो सोप लगाएंगे, अगर फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश है जो कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए आपके पास लोशन है और हेयर रिमूवल लोशन भी है, ठीक है, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए डी स्किन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन में आप लोगों को दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाकी व्हाइट एज में आप लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरती को बढ़ाते जाएंगे और हमेशा खूबसूरत रहेंगे। और इसी के साथ साथ आज के टॉपिक की जाने बातें हैं, तो मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछना है वो क्या होगा, जो सवाल आज का कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आप लोग बिना वजह के तैयार हुए हैं। ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जो कि भाई बिना मतलब के रेडी हो जाते हैं और फिर वो हमेशा तैयार होते हैं कि भाई कोई बोले कि कहीं जाना है तो हम बस बोले चलो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप भी कभी बिना वजह रेडी हुए या फिर आप उन लोगों में शुमार नहीं आते। बिल्कुल जी मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिग्नल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888100। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आते हैं तो आपको इजीली हमारी पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव पोस्ट होती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है और लाइक करने वाले लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। चलिए जी, और इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग कभी बिना वजह के रेडी हुए हैं, तैयार होते ही कभी बिना आज जरा मुझे। और उसके अलावा वजह वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं ना कि भाई वजह ही हमें तैयार होने की, लेकिन बिना वजह अगर आपके पास कोई वजह ना हो लेकिन आप तैयार हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जल्दी से मुझे बताइए और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हर जगह हमने अवेलेबल करा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो उसके लिए आपने हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी है। उसके लिए आप नंबर डायल करेंगे जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, तो नंबर डायल कीजिएगा, उसके ऊपर नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए और बताइए कि भाईजान हम भी लेना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमें कहाँ से मिलेंगे, और फिर वो आपको बता देंगे कि भाईजान आप कहाँ से जाकर परचेज करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो फिर वो अवेलेबल भी करा देंगे। तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर डायल कीजिए जो कि महर इरफान सियार साहब का नंबर है जो कि आप लोगों को रिस्पॉन्स देने वाली है, और नंबर के ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, सही तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ से जाकर परचेज करने वाले हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो 03-15-799-0595 ये नंबर आप जरूर से डायल कीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है। और ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते खुश आयो जी जी। शायरी लिखी था, हमने तुम्हें लफ्जों में कैद करना चाहा मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि कलम भी खामोश हो गया। मोहब्बत ये नहीं कि हासिल हो जाए, मोहब्बत तो ये है कि दुआओं में भी बस वही रहे। तुम्हें चाहा तो ये हुनर भी सीख लिया, मुस्कुराना दर्द में और जीना तुम्हारी याद के साथ। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मसरूर अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम मसरूर, कैसे हैं? कहते मुस्कान जी, हाँ जी बोले, कैसे हैं? अच्छा عمران خان رخ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. عمران خان کا رخ ہماری پروگرام کی جانب آ چکا ہے, سو بہت شکریہ جی, ویلکم کرتے ہیں. ہدایت اللہ احمدانی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں گانا اچھا, ٹھیک ہے گانا سنائیں گے. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ خوبصورتی کی بات ہو اور اسمارٹ نہ ہو, ایسا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. یہ تو صحیح بات ہے ویسے. اور کہتے ہیں گھر کے تانے سننے کا سب سے زیادہ حق لڑکیوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم زیادہ گھر میں نہیں ہوتے نا, تو صرف آرام کرنے گھر جاتے ہیں, اسی لیے ہاں یہ ویسے صحیح بات ہے. اور حالات ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کے جی وعلیکم السلام, درد دل ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام پیاری, کیسی ہیں. اور اقبال لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرپور خاص ہی ہمارا شو سن رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائی کو. انور بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں. پھر اوکے جی, ایس این اربانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام کہتے ہیں. او مائی فیوریٹ آر جے, کیسی ہیں آپ, ویلکم دل سے. وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ کو بھی دل گردے فیفڑوں سب سے ویلکم کرتے ہیں. انور بھائی آپ نے شاعری لکھی ہے, شاید یہ تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی, تو بہت شکریہ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے بھائی جان. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے جو پالے پالے لسنرس ہیں نا, وہ کتنا زیادہ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دوستوں کو جو ہے نا وہ مینشن کرتے جائیے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات, کے ٹاپک کو فالو کرتے جائیے. اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ کبھی بنا وجہ ریڈی ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا وجہ تیار رہتے ہیں, ہمیشہ تیار کہ بس کوئی بولے کہیں جانا ہے تو وہ بولتے ہیں چلو ہم یہاں پر جاتے ہیں جی, شارٹ کمرشل بریک کی جانے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, بس آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے جائیے, خوبصورت ہوتے جائیے.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار, صاف نرم آئے روشن چہرو. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: This program is brought to you by
6: Bank Al-Habib. رشتہ بھروسے کا.
7: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے, میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں NICH کراچی میں. پولیو کے خلاف 13 اپریل سے ایک مہم شروع ہو رہی ہے, 2 قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے, اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار.

0: अकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network,
4: GFM 88 Network,
3: सिंध की आवाज।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेट पर। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मातिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सदरा के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एनडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जाइए। प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल बहुत सारे लोग तो आप लोगों में और बताइए आप इस्तेमाल व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो है ना पहले बता दिया कि भाई किस तरह के ये प्रोडक्ट्स और आपने किस तरह जो है ना इनको परचेज करना है। लेकिन अब बात जरा यहाँ तक पहुँच गई है कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों के एरिया में भी मिल रहे हैं, आप लोगों को पता भी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर जो है ना वो थोड़ी सी खुल जाती है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यों इस्तेमाल करेगा। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह होती है कि भाई आप लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के ये वाले फायदे हमें मिलने वाले, इन चीजों से ये प्रोडक्ट तैयार शुदा है और ये वाले फायदे हमें मिलेंगे जब हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, यानी कि रात के टाइम लगाने वाली क्रीम है और उसके अलावा ये एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है। तो एवोकाडो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एलोवेरा तो भाई आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एलोवेरा से आपके चेहरे पर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एक्ने का मसला है वो खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरमी मुलायम करती है और आपकी जल्द को हमेशा तरोताजा बनाए रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है वो सारी आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और साथ साथ जबकि आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है। जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो किसी भी टोन की हो तो आपको बेफिक्र होकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और जनाब सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो ये जरूर आप देखा करें कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, हर कोई लगा सकता है, लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे और साथ साथ खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप परचेज करेंगे और साथ साथ अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ अगर आप एक्ने की वजह से शदीद वाला परेशान है तो भाई परेशान मत होइए, वैसे भी जब गर्मियों का सीजन आता है ना तो बहुत से लोगों के चेहरे पर ये एक्ने का मसला ना ये आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनकी एज चाहे कितनी भी हो ना लेकिन उनके चेहरे पर अगर एक मरतबा एक्ने आ चुका ना तो उसने ये बोलना है कि भाई माँ हानिकारी कोने में तो मामा इतने उनम तहा जाने एक्ने की चो बाबा हलो आने सांझ मोकल थी भैया। तो एक्ने के खत्म कयो एक्ने चलाए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी जिकवाने ही ट्यूब अवेलेबल आ तवां जला तवां ही एंटी एक्नी ट्यूब लगाए सगो था जेको डॉक्टर पिंपल जी नाले सा है। डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब आहे जेको आयुर्वेदिक फार्मुलेशन तैयार थे लाए तवां दुकानदार के चंदा ना बाबा असा के डॉक्टर पिंपल ट्यूब जो जेको व्हाइट एज वारन जो आहे तो तवां के इजी ले दे छरीदा। उन का अलावा लगाए जे तरीकेकार बिल्कुल आसान आहे त जेको ही डॉक्टर पिंपल वारो एक्नी वारो ट्यूब आ ना इनके तवां राजे टाइम लगाए था राजे टाइम तवां बिल्कुल लगायो डी हम अगर लगाए चाहियो था तो थोड़ो मतलब थोड़ो चीजों जेके ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड

ओपिनियन पर तमा राजे टाइम लगायो डाडो मुनासिब वक्त हुंदो आए तो पान पान अच्छे तरीके से साफ कयो धो पान हथन के साफ कयो सफा धोई साफ सुथरा थी करे ओई तमा पांजे चेहरे जो जको ट्यूब आ यू अप्लाई कना जिते जिते दाणो आ जिते जिते निशान आ जिते जिते एकनी आ जिते जिते पिंपल आ जिते जिते ता जो कोई निशान आ या जिते कोई सड़न जो निशान आ कट जो निशान आ उन सबनी निशानन के तमा जमा करे उते सबनी ते तमा डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब लगाईंदा ट्यूब लगाने का पोई तमा छडी दींदा सुबह जो थी करे ताके दोबारा जको पानो फेस वॉश करणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदा त बाबा तव्हांजे चहिरे ते जेका रिज़ल्ट आहिनि अचण शुरू थी विया आहिनि नवां कम स्टार्ट थी वियो आहे त तव्हां लाज़मी लगाइजो तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी वेंदी उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा असां सभिनी जो राज दुलारो थी वियो आहे जंहिंजो नालो आहे वाइट एज जी लवली क्रीम त वाइट एज जी लवली क्रीम जे तरफ़ अगरि असां अचूं त हिन जे बारे में तव्हांखे नॉलेज हुजण ॾाढी ज़रूरी आहे त वाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे न हीअ तमामु ज़बरदस्त क्रीम आहे वाइट एज की लवली क्रीम जेका आहे हीअ रेडियंट आहे अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूदु आहिनि समझो था जंहिंमें हर तरह जो वाइटमिन तव्हांखे मिली वेंदो चाहे उहो वाइटमिन हुजे वाइटमिन ई हुजे वाइटमिन डी हुजे हर वाइटमिन हिन जे अंदरि मौजूदु आहे 30 वाइटमिन्स आहिनि समझो था उन खां अलावा वाइटमिन सां भरपूर आहे ऐं वाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूदु आहे ऐं सनस्क्रीन जेका न उहा इन लाइ भई एड कई वई आहे हिन जे अंदरि त जीअं तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिले ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि थी सघे त वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो हिन सां तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी तव्हां अगरि कोई भी मेकअप नथा यूज़ करणु चाहियो तव्हां कोई बि अहिड़ो प्रोडक्ट नथा लॻाए सघो जेको तव्हांजी जेको आहे न गर्मी जे मौसम में तव्हांखे थोरो डिस्टर्ब कंदो हुजे त तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लॻाए सघो था जेका लाइट वेटेड आहे ऐं मतिलब ईज़ी आहे हिन जो फार्मूलो बसि तव्हां ॾींहं जो लॻायो सुबुह जो लॻायो मंझंदि जो लॻायो राति जो लॻायो जॾहिं टाइम दिलि चयो लॻायो ऐं हिन में कोई बि एज जी लिमिट न आहे तव्हां हर एज में लॻाए सघो था ऐं हिन जो जेको टेक्सचर आहे न ॾाढो स्मूथ आहे ॾाढी वी आई पी क्रीम आहे त तव्हां लॻाईंदा त तव्हांखे पाण मज़ो अची वेंदो सो तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम त लास्ट में ट्राई करे ॾिसजो जेके माण्हू इहो सोचींदा त बाबा असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं असां फलाणा हेवी प्रोडक्ट न लॻाईंदा आहियूं त बाबा तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम हिकु दफ़ो मुंहिंजे चवण ते लाज़मी लॻाए ॾिसजो सो वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां सभु लॻायो ऐं सफ़ा लवली लवली थी वञो उन सां गॾोगॾु ही तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था किथां बि वञी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां परचेस करे सघो था अगरि न बि मिलनि था त उन जे लाइ तव्हां डायल कयो जनाब 03-15-799-0595 ही नंबर तव्हांजी आसानी जे लाइ आहे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वञी पुछा करे सघो था मिलनि था त बढ़िया नथा मिलनि त पोइ तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे सघो था ठीकु आहे त राबितो कयो बाबा अवेलेबल कराईंदा वञो उन खां अलावा जेको आहे न त हाली तव्हां वञी ईज़ीली वठी सघो था सो मूंखे ही वारो गानो हलाइणो हुयो हो त हरू भरू हली वियो ओके जी सो प्रोग्राम आहे एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट किताबनि सां तव्हांजी सिदर तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे मूंसां गॾु केरु आहे ॿुधाईंदा वञो पिया तव्हांजा मैसेज आहिनि तव्हांजा कॉमेंट आहिनि ऐं फेसबुक वारो पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो जे ख़बर पए बाबा जोश में आयो

अच्छा किशोर भाई वो निशान भी हटजी वेंदो बस तवा लगाए सो कोई भी निशान आ केड़ी भी टाइप जो निशान आ तवा जो रिमूव थेंदो जदे तवा डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब इस्तेमाल करना सही है।

एज ब्यूटी क्रीम नाई से है। सॉन्ग सुनाए शमन का ओके जी ओके। एडम हमारे साथ कहती आप भी मुझे भी सॉन्ग सुनाओ जी। मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाए। और ये मेरे पर खास है शुएब महर हमारा शो सुन रहे हैं। शुएब आपको भी वेलकम करते हैं। अब्दुल्ला महर आप क्या कहते हैं कि बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है। बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए। और गुलाम शबीर तुनियो भाई है फ्रॉम कंबर हाई, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, हम भी अच गया आपके शो में। शो इज ब्यूटीफुल, आप ही सॉन्ग तो सुनाए रानी की आवाज में है। अदम ॾिसां ही गानो मूंखे मिलियो त तव्हांजे लाइ हलायूं था, ठीकु आहे? और ये बेवस हमारे साथ है, बेवस जेडे बलोच दरगाह साईं जमाल शाह से। ओके जी, मोरो से आप हमें सुन रहे।

दोस्त को लाइक और शेयर करो। अच्छा दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनकी कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ हैं, हेलो। इखलाक बलोच के भी नाइस यो आंसर बिना वजह रेडी असान चू कुरानियों तीन आए इन लाइ असा तैयार रही ना ही थींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदीब बचपन का हमेशा दोस्त है।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो
2: इट्स 2 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद सा वधिक हैरत अंगेज रद्द अमल लींदासीं ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जो रद्द अमल ईरानी नायब परदेही वज़ीर कादिम ग़रीब आबादी जो चवण आहे त अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे असां कंहिं बि जारहियत जो मुक़ाबलो करण जे लाइ तयार आहियूं
6: अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गाल में अकबराए की दावा कई तो बे तरफ ईरान से हमला की धमकी भी डी अमरीकी नायब सदर जडे वेन है ईरान से गाल में अहम अकभराई थी है ईरान मुआहदो करण चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाले शर्त हथ खणो पवन ये न थे तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कर
5: अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर करे वरतो पर ही मीडिया मूजिब ठहराव सठहराव अमेरिकी ऐवान में पेश किया वो हलदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है यो भी इम्कान जाहिर कर पे वे तो ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी ऐवान मां भी मंजूर किया वो
6: वफाकी हुकूमत ईद उल उज़ा लाइ टिन डीह की मोकल जो ऐलान कर छो वजीर आजम की मंजूरी से काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी किया 26 27 28 मई ते मोकल हुंदी
5: आबाशी खाते किरोड़ रुपया किथे खर्च कया वाहन शाखन की हालत खराब वधिक 1 अरब रुपए की स्कीम भी तैयार लाड़कानो शिकारपुर जिले में आबाशी खातो गैर फाल बणन शिकारपुर की बेगारी केनाल सिंध केनाल गोहर शाख लुंडी शाख समेत बेन शाखन ने वाहन की खोटाई न थे समेत टुटल दरवाजन की भी मरम्मत न थी आबाशी खाते लाड़कानो में मोरा लूप बंद के मथा पास की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए की स्कीम की मंजूरी डिनी 2025 की बोर्ड में मोरा लूप बंद बाबत आबाशी खाते मॉडल स्टडी कराने बदला सिर्फ तजवीजों के बुनियाद से 1 अरब रुपए की स्कीम तैयार कई हुई

0: नो दंबालो बरसा गुजरियल डी खा गुम थियल बिन बार लाश घर के पेतिया में हथ गोट खान मजिस्कानी में बासुम बारड़ी मुर्क ए बारड़ो जमील सोमाल कल शाम का गुम हुआ। पुलिस का चवण है तो बार लाश घर की पेतिया में मिलिया जांच कर
1: हिंदुन के रूहानी पेशवा साई साधराम जो मर सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुंचने बाद एम्बुलेंस जरिए सखर एयरपोर्ट रवानो। तर्जमान हेड़की दरबार जो चवण है मर सखर एयरपोर्ट पहुंचने बाद हेड़की दरबार आंदो वो आखिरी रस्मू सुभाने सुबह 10 बजे रेड़की दरबार में अदा कई वेंदियों।
0: जगमबाद भरसा पसंद परणे के तकरार तां सवा का मथे घर सहण वाले केस में बिन्हीं धुरन के अहम मानन जा नाला एफआईआर में शामिल करण बाबत केस की बुधड़ी थी है। बिन्हीं धुरन अहम मानन सेकंड सेशन जज जगमबाद अदालत में पेश चना धुर चयो तो असंज बिरादरी न्याणी अगवा करण बाद घर सहण जो इल्जाम मड़े खेस केस दाखिल कराया व्या। बुरला धुर के मौकफ सामू न आयो बुधड़ी 3 जून ते मुलतवी।
1: सांगर वेझो भाव कार इल्जाम हेठे भेण के कुहाड़ी हणी कतल कर छो। नव गोठ में जवाबदार 26 साल की भेण के कतल कर छो। पुलिस को चवण है नारी की हफ्तों अगु शादी थी हुई। जवाबदार निंड सुतल भेण के कुहाड़ी जा वार कर कतल किया।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, बहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरती में और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता भी इतने ज्यादा प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में रही हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सके और अपने इस्तेमाल करने के बाद जो है ना हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को रिजल्ट्स किस तरह मिले और किस तरह आप लोगों का फीडबैक है जनाब इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट है, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं। अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं, तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है, अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03 1579 0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें। तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट है जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है, 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जनाब। क्या बात है, समझ रहे हैं, 2 रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा माइक्रो बीट फार्मुलेशन से तैयारशुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिला वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे बला करो जरूर। कुछ लोग तो ऐसे होते, मैंने देखे शादी ब्याह हो, कोई इवेंट हो, तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं। और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रहा करें। और ये एक और पर्सनल मेरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम का होने वाला है 0332-1322-88। सो 0332-1322-88 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक। रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज़ सरंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
0: जदें माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
3: असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नई फिल्म। हमारे साथ मौजूद थी जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना खिलाई हुए स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जाइए जनाब खूबसूरती, कंखी ना वणंदी बाबा हर कोई चाहिंदो त असांजी खूबसूरती जेका न वधंदी रहे। तो तव्हां वधाए सघो था जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो। ओके जी, अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त हुन जे लाइ तव्हांखे नंबर आहे जेको डायल करणो पवंदो। नंबर आहे 03-15-799-0595 03

हिदायत अल्लाह कहते हैं सदरा तो खास आवाज किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता ऐसा मत बोले बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आहे बिल्कुल जी प्रोग्राम तो भल्लो आए पर जदी तवा ही प्रोडक्ट जके बुधाए नी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल करना तो पोए ला थी वेना सो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जी सुना सुना सफा सुना थी वेनो आयो ना का अलावा असानी पोस्ट के लाइक शेयर कयो जन अन्या वही कोन कयो आहे अनवर भा बिल्कुल हाने मोकलाणी जो वक्त सफा करीब अची चुको आहे ओ हते सामू अजे बीठो आहे सो हाने बिल्कुल तवा खा इजाजत वठनासी वरी से तवा से मुलाकात मुजी सुभाने वाली प्रोग्राम में थेण वाली आहे 1 बजे का टेबल ते तवा जो संग साथ हो ना बुधन न विसारी ना आ केते का भाई सैया सो मोकलाणी नाए बाबू सिलसिला में सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू।

ईद उलज़ा ते टिनि ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान 26, 27, 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

आबाजी खां ते किरोड़ रुपया किथे खर्च कया। वाहन ऐं शाखनि जी हालत बदस्तूर ख़राब। गैर फाल बणियल आबाजी खाते लाइ 1 अरब रुपयनि जी वधीक स्कीम मंज़ूर। शिकारपुर जी बेगारी कैनाल, सिंध कैनाल, गोहर शाख, लैंडी शाख समेत ॿिनि शाखनि ऐं वाहन जी न खोटाई। हिकु अरब रुपयनि जी स्कीम बि मंज़ूर। 2025 जी बोर्ड में मोरिया लूप बंदि बाबति आपाशी खाते मॉडल स्टडी कराइण बदिरां सिर्फ़ तजवीज़ुनि जी बुनियाद ते 1 अरब रुपयनि जी स्कीम तयार कई।

0: नौदम बालोबर सां गुज़िरियल ॾींहं खां गुम थियल ॿिन ॿारनि जा लाश घर जे पेतीअ मां हथ ॻोठ खान मोम जिस्काणी में मासूम ॿारड़ी मुर्क ऐं ॿारड़ो जमील सुमाल कल शाम खां गुम हुआ। पुलिस जो चवण आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा लाश घर जे पेती मां मिलिया आहिनि। मामले जी वधीक जांच कई पई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर साल से कम है और इससे कोई खतरा। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: जो आवाज़ है सिंध जी दिल जो
4: टूल करने पर भी जीत सकते रकम बैंक अलबीब के तो शानदार इनामार एंड प्राइज 6 स्मार्टफोन्स और स्मार्ट हब देखें। बैंक अलबीब के 1320 स्ट्रिप आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से मिनटों में पहुंचता। रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में
5: रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा अब्दुल्ला चाचड़ है, मैं NICH कराची खिलाफ हो रही है हर बच्चे को जो भी है और इसलिए के 2 कतरे
6: घर मटियारी की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

करने के बावजूद आंखों से आंसू मेरे चेहरे पर लड़कता हुआ गिरा, दुपट्टे में जज्ब हो गया। एक बहू की कहानी मेरी जबानी, माशरे की एक तल्ख हकीकत जहाँ बहू को औरत नहीं बल्कि एक लोहे की इंसान समझा जाता है, जिसे न तकलीफ होती है न भूख लगती है, सिर्फ एक गुलाम समझा जाता है, जिसे निकाह के बंधन में बांध कर हमेशा के लिए उसके माथे पर मोहर लगाकर उसकी जिंदगी को खरीद लिया जाता है, बात बात पे जलील किया जाता है, और अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठाए जबान दराज और बदतमीज कहा जाता है, अगर खामोश रहकर जुल्म सहे तो जाहिल घुन्नी मीसनी ड्रामेबाज कहकर मुंह बंद करवा दिया जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वो एक गुलाम ही होती है। और यही कहानी है घर भर की। तो क्या मैं आज आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ?

थैंक यू सो मच, मैं शॉक हो रही हूँ। एनीवे जनाब, सबकी अपनी अपनी राय है, देखें सबकी राय जो है वो सर आंखों पर, और मैं आप लोगों की राय के हवाले से जस्ट किडिंग आपसे हल्का फुल्का जो है मजाक कर सकती हूँ, लेकिन सबकी राय हम मकदम रखते हैं, और मेरी राय भी आपने जो है ना उसको भी वैल्यू देनी है, तो मेरी राय के मुताबिक यहाँ पर मुझे जाना है ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूं। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एक्सलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद।

0: a qualified technician ji zair nigrani. Ashik Honda Motors. Address Indus Bypass, Nast, Railway Line, Mehrapur. Rabte Jilai, Asim Hussain Arai, 0307-359210.
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबह ॾहें खां शाम पंजे वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: yeah!

दिल देखना छोड़ दूं। बहुत से लोगों ने ये समझा आप शायद चार्ल्स दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारेंगे या भीख मांगने पर मजबूर। उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय अपना कारोबार शुरू किया।

करने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और ऐसी हरकत जो भी बंदा करे ना, उसको तुरंत जो है ना बंदा किसी जो है तो लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया और उसने कहा कि भाई मेरी पसंद की शादी करवाई जाए, नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगा लेदास। अब अगर उसने छलांग लगानी है, कौन सा जिंदा बचना है? फिर तो शादी किसी से भी नहीं होनी, ना ही पसंद की होनी है ना ही अरेंज होनी है। एनीवे जनाब, उसके घर वालों ने उसे जो है बहरहाल, वो जैसे बच्चों को पटाते हैं ना, बड़े पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चे जिद कर रहे होते हैं उन्हें चॉकलेट्स और चीजें दिखा के, ऐसे उस नौजवान से भी उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़के की लक माशाल्लाह है कि उस जिस खातून के लिए वो टावर के ऊपर चढ़ गए जाके, उस खातून ने ही मना किया भी मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर एंड में हल यही है कि उस नौजवान को जो है पुलिस के हवाले किया गया। आई नो वेरी वेल, अब उनके तमाम तर जो है सॉफ्टवेयर

0: ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: जनाब वंस अगेन वेलकम कहेंगे। और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट आई थिंक कल मुझसे किसी फीमेल लिस्नर ने सखर से की थी, तो कल वक्त नहीं था इसलिए मैं प्ले नहीं कर पाई थी। आज आई होप कि आप सुन रही हो अपना सॉन्ग। और रिसरे गोट का अनवर अली मरी भलीगर जो था तवा के आई मा आपी हाय हाय टू यू। आपका शो बहुत अच्छा है अस्मा लाकारी, वेलकम इन अवर शो अस्मा। और सागर से लुटको मोरी, सांगर से साले लगारी, लाल बख्श लगारी, बिल्लावल लगारी, उसामा जान लगारी, शो लाजवाब है। ओके बहुत शुक्रिया। और टॉपिक आज का हमने रखा है, आपसे पूछा है क्या बहू बेटी नहीं बन सकती, आपका क्या कहना है इस बारे में। आपके एसएमएसेज हमने शामली प्रोग्राम की, एसएमएस करने का तरीका अगेन रिपीट करती चलूं, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है। 8881 पर लाइव कॉल के लिए डायल करना है 03136615688। कुछ कॉल श्यामली प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदा वेलकम कहते हैं, टॉपिक के बारे में क्या राय है आपकी?
1: भेण माँ जानवर के मंडी से जो प्रोग्राम हवा लगे पी सब एपीडी लगाए बुधा पे जानवर के मंडी वीरपुर खास वाली पीढ़ी थे।
0: फिर मैं क्या करूँ, मैं भी आ जाऊँ वहाँ जानवरों के वहाँ? ध्यान करना कोई बकरा आपको लात ना दे मारे। आप मुझे टॉपिक के बारे में बताएं क्या कहेंगे। चले ठीक है, आप बकरे और वो जो जानवर दीगर मवेशी मौजूद है उनसे हाय हेलो करें और अदर लिसनर्स को मौका दें शामले प्रोग्राम होने का। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है? अरे वाह, काफी दिनों बाद आपने हमें फोन किया था, क्या हाल है आपके?
2: बिल्कुल शुक्रिया बाजी, ठीक ठाक। आप सुनाए बाजी, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? ये ख्याल पक्का हो गया है हमारे दिमागों में कि हम बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए।
2: बिल्कुल
0: चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुए।
2: थैंक यू सब दोस्तों को सलाम बाजी।
0: ठीक है जनाब, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, ढेरों सलामती आपके लिए। तमाम सुनने वाले सलामत रहें, आबाद रहें। क्या बहू बेटी नहीं बन सकती, ये जानने के लिए नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: सलाम जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है? जी जनाब आप बताइए, फीमेल आई है कॉलर तो उनसे पूछेंगे क्या बहू बेटी नहीं बन सकती, इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है?
3: क्या बहू तो माँ मान सकती है?
0: मैंने जो सवाल पूछा है फिलहाल बहू को डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? बहू के जो डिफरेंसेस है, फिर सास के हवाले से नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ऐसा इंटरेस्टिंग सा हम टॉपिक रखेंगे। अगर हम दोनों पहलू डिस्कस करने लगेंगे तो किसी ख्वातिर ख्वाह नतीजे पे आज नहीं पहुंच पाएंगे।
3: वैसे कहते हैं कि ये होती है कि जब सास अच्छी होती है तो बहू बुरी होती है, बहू अच्छी होती है तो सास होती है, तो इसलिए।
0: मतलब ये आपका कहना है कि एक इंसान के हाथ में नहीं है, दोनों साइडेड से अगर कोशिश हो तो शायद ऐसा हो जाए।
3: हाँ
0: सही, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप शामली प्रोग्राम हुई, थैंक यू सो मच। ओके जी अल्लाह हाफिज। और सब लोगों की डिफरेंट राय है। अच्छा हमारे इर्द गिर्द हम जो इंसान जो है वो माशरती हैवान है, उसके आसपास बहुत से लोग रहते हैं तो डिफरेंट लोगों के साथ उसके डिफरेंट तजुर्बात होते हैं, तो जो भी राय आ रही है अपने अपने तजर्बे के हिसाब से आ रही है। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, कौन बात कर रहा है?
2: लारका ने ज़ुहैब।
0: खुश आमदीद कहेंगे ज़ुहैब भाई आपको। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं आपके आस पास? हेलो।
2: अच्छा बच्चे तो दूर हैं अभी।
0: जी जी, क्या क्या कहेंगे आप सब सुनने वालों?
2: सुनने वालों को यही कहता हूँ, तो जो बहू जो है ससुराल की बेटी नहीं हो सकती है।
0: अच्छा
2: कुछ भी हो सकता।
0: क्यों नहीं हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती है?
2: नहीं हो सकती है।
0: वजह?
2: नहीं सकती।
0: इतनी मेहनत करती है, खाना बनाती है, कपड़े इस्त्री करके देती है, कपड़े धो के देती है, हर वक्त लबैक कहती है, तो फिर भी उसके बाद भी मतलब नहीं हो सकती?
2: नहीं है जो बहू का किसी है नहीं, जो रवैया अच्छा नहीं होता ना।
0: चले ठीक है, आपका कहना है कि बहू का अपना रवैया सही नहीं है। चले ठीक है
2: जी, दोस्त सुन रहे हैं।
0: अच्छा दोस्त क्यों सुन रहे हैं?
2: ये सुन रहे हैं, मैं नाम का नाम उठूंगा।
0: चले नाम बता दें दोस्तों के।
2: आपसे चाचर फरान मुझे शाहबीन।
0: ठीक है सबनी जी, मेहरबानी होगी जी। और जनाब बहू जो है उसका रवैया होती है फाइटिंग। और नेक्स्ट का अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहा है?
4: मैं अस्मा बात कर रही हूँ, मेरे
0: पास। अस्मा कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। आप बताइए क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
4: मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच होती है, अगर अच्छी सोच है तो बहू बेटी भी पूछ सकती है।
0: अच्छा सही, चले अस्मा ठीक हो गया, क्योंकि ब्रेक भी करीब करीब है तो हम ज्यादा लंबाई में नहीं जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगी सब सुनने वालों से? अच्छा बेटी जैसा सलूक करेंगे तो बहू बेटी बन सकती है
4: ना? अगर समझे तो बेटी बन सकती है, वो बेटी ना, बेटियों की वजह से घर चलता है ना, लड़कों की वजह से तो घर नहीं चलेगा।
0: लड़के तो घर से बाहर होते हैं आधा टाइम, लड़कों ने क्या घर चला है?
4: वही तो बोल रही हूँ, अगर बेटी समझे तो बेटी हो सकती है, अगर सास बेटी ना समझेगी तो।
0: यही लड़के जो अभी कह रहे हैं बहू नहीं बन सकती बेटी, अगर ये पांच दिन रोटियां पकाए ना गर्मी में किचन में, और
4: तो पता है उसको चले।
0: हाँ और बच्चे पा पा करके रो रहे हो जैसे रो रहे होते हैं ना, तो फिर इनको लग पता
4: चलेगा। अच्छी सोच रखेगी कि वो भी कहीं से आती है ना बेचारी, घर छोड़ के अगर सासे बेटियां समझे तो सब कुछ माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।
0: ठीक हो गया, गुड लक अस्मा, थैंक यू सो मच। और जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।
5: It's 4 PM. This time check is brought to you by
6: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है।

हींअर ओचितो तहरान पहुची वियो ज़रिए मुझे मोहसिन नकवी ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि बाबति ईरानी क़यादत सां अहम मुलाक़ातूं कंदो। मोहसिन नकवी कुझु ॾींहं अॻु बि तहरान पहुची ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची ऐं ॿियनि ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं कयूं हुयूं।

ईरान ऐं अमेरिका जी वेढ़ खे रोकण ज़रूरी आहे। हिक तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि क़दमनि जी मुख़ालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक़। बीजिंग में रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि थियूं। पुटिन चयो त आलमी सतह ते इस्तेहकाम बरक़रार रखण जे लाइ चीन ऐं रूस जो किरदारु अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटजिक सहकार जी गॾियल पधिराई ते सहियूं बि कयूं वयूं।

ईरान के हाणे वॾो रोदो ईंदो, वक़्तु बि घटि अथसि। कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। थी सघे थो जुमे या छंछर ते ईरान मथां हमिलो करे छॾियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ हिकु कलाकु बचो हो। सऊदी, कतर, यूएई ऐं ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते हमिलो मुल्तवी कयो हो।

जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल दींदासी। ईरानी वडे वजीर अब्बास इराकी जो रद्द अमल। ईरानी राय वडे वजीर काजिम गरीब आबादी जो चवण है अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बढ़ाए पेश कर रो है। अस कें भी जारियत जो मुकाबलो करण के लिए तैयार आयो। अमेरिकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अगभराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस है तो ईरान से गाल में आम अगभराई थी है। ईरान वायदो करण चाहे तो ईरान खेट में हथियार रखने वाले शर्त ता हथ खड़ो पव ये न जंग बीहर शुरू कंदी। अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी खत्म कर फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो। परे मीडिया मुजिब ठहराव 47 वोट्स के मुकाबले में 50 वोट्स से मंजूर थो। जंग सबब अमेरिका समेत सारी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। परे मीडिया मुजिब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवान में पेश किया वो हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर किया वे तो ईरान की नाकाबंदी फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवान मां भी मंजूर किया वो।

0: आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक तलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक तलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम

0: संतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 33 8559।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो,
2: जैसे कि ग्रैंड प्राइज 660 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।

ही प्यारा सा गीत सुनवाने वाली हूँ अपने सेगमेंट रिवर्स गियर में। आज मैडम ताहिरा सैयद को याद किया है, टंडा मोहम्मद खान वालों ने तो जनाब आप की फरमाइश पर।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DFM 80
1: बचाओ जूं एहतियाती तदाबीरूं एहतियात इलाज का बेहतर आहे पान के कांगो वायरस का बचायो कांगो वायरस जा सबब कांगो बुखार जो सबब बनजे थो कांगो वायरस एक खतरनाक वायरस आहे जेको जानवरन आई माल ते पलंजदड़ चिचड़न जे चक सा थींदो आहे इन खां अलावा ही मर्ज मुतासर जानवर या इंसान जे रत या गिघ सा बि वधंदो आहे कांगो वायरस जूं अलामतूं तेज बुखार जिस्म आई उज़वन में सूर मुंह आई नक मां रत जो वहण उल्टी गिची जो सूर बुख जो न लगन रोशनी बर्दाश्त न थियन अखिन जो सुजन जिस्म ते गाढ़ा निशान या धबा अवाम उनास जे लाए हिदायतूं बारन के जानवरन सा रांद खेडन न दियो जानवरन के चिचड़न खां बचाण जे लाए जानवरन जी सफाई जो खास ख्याल रखो पंहिंजे पालतू जानवरन ऐं माल खे चिचड़न खां बचाण जे लाए लाइव स्टॉक जे मशवरन ते चिचड़ मार दवाऊं इस्तेमाल करियो कुर्बानी जो जानवर खरीद करण खां पहिरीं यकीन करियो त हिन जे जिस्म ते चिचड़न जा निशान न हुजन जानवरन खे चेक करण खां पहिरियां प्लास्टिक जा दस्ताना ऐं फुल बांह वारा कपड़ा पहिरियो ऐं पाण खे रत जे छंडन खां बचायो पारां डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह डिप्टी डायरेक्टर जनरल VBD हेल्थ सिंध नवाब समीर हुसैन लगारी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ऐं डॉक्टर संदीप कुमार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर खास
0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीरे और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
1: औरतन जे कत्ले आम खिलाफ रैली अचो अचो शरीक थियो औरतन ते जुल्म खिलाफ गद थियो तारीख 21 मई खमीस जे दिन सुबह जो 10 बजे ताज पेट्रोल पंप मदरसो पुलिस चौकी झुड़बी रोड खां निकरी मघन हाले पोटो 12 बजे गिरोह शरीफ 12:30 बजे दौलताबाद 1 बजे फुलहडियूं 1:30 बजे लाला खान शाख 2 बजे सामारो स्टॉप 2:30 बजे तगूसर 3 बजे हिंगोरनो 4 बजे ऐं सिंधड़ी चौक 5 बजे पहुचंदी इहो रैली औरतन खे कारोकारी कत्ल आम आहे सिंधड़ी जा हथ औरतन जे कतल सां रंगियल आहिनि कारोकारी असांजी रस्म न आहे कारोकारी तोहमत आहे ज़ुल्म आहे पंहिंजनि बचनि खे नियाणियुनि खे न मारियो न खुदा जो ॾोह खणो न अज़ाब खे दावत ॾियो ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो पारां सिविल सोसाइटी मीरपुर ख़ास
2: آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जेकॾहिं तव्हां

0: एहसास।
1: आप सुन रहे थे जीए, अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जेडी वेंसडे हुआ है त ईरान सां गालियन में अहम अखबराई थी आहे। ईरान वायदो करण चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखण वाली शर्त हथ खणणो पवंदो, ईअं न थियो त जंग बीहर शुरू कंदासीं।

अमरीकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी खत्म करण ऐं फौज हटाइण जो ठहराउ मंजूर करे वरितो। परेही मीडिया मूजिब ठहराउ 47 वोटनि जे मुक़ाबले में 50 वोटनि सां मंज़ूर थियो। जंग सबब अमरीका समेत सॼी दुनिया जी मईशियत खे वॾो झटको लॻो आहे। ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फौज हटाइण जो ठहराउ अमरीकी ईवान मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।

अमरीकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी कतल मामले ते डीआईजी सरकार सेनेट जे घरू मामलन बाबत स्टैंडिंग कमेटी अडो पेश। कराची पुलिस चीफ आजाद खान मूजिब मनशियात डीलर पिंकी खिलाफ 2021 का 26 ताईं 21 केस दाखिल थिया। गिरफ्तारी दौरान पिंकी जे घर मां कुकियन भी हथाई। पिंकी जे 16 बैंक अकाउंट जो पतो लगायो। एक अकाउंट मां 90 लख रूपया मिलिया है। डीआईजी सरकार नासिर आफ्ताब कमेटी के ब्रीफिंग डींदे चयो त नारी खालदा उर्फ रुबीना चांडो जे कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार कया है। नारी पसंद पड़ने लाए घर निकली वही हुई जैखा पोए केस वापस कराए जरगे में कतल जी फतवा जारी कई वही। केस में अहम कलम शामिल कया व्या जवाबदार सजा का नथा बची सकन।

मनशा डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के प्रोटोकॉल डेण बारे मामले की जांच मुकम्मल। एसएसपी सिटी अली हसन, एसएचओ गार्डन, एसआईओ जिम्मेवार करार। रिपोर्ट में जड़ाया वो है एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल एसएसपी सिटी की हिदायतन से पिंकी के पुलिस प्रोटोकॉल डनो। पिंकी के थाने में खाधो, मेकअप, कपड़ा ए दवाओं फराहम क्यों। पिंकी की गिरफ्तारी का अदालती पेशी ताई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ए डीआईजी दखड़ के अणजान रखो वो। पिंकी थाने से मौजूदगी दौरान नशे की हालत में हुई पिंकी के एसएचओ पैंजे ऑफिस में खास मेहमान जिया विहारियो। बिन्हीं में पैसों की लेती लेती बाबत भी गालियों थियो। इन मामले की जांच थियण घुर्ज। टे ढी मोकल जो ऐलान 26, 27, 28 मई से मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो।

खुराक खाते मिठी में 10 करोड़ रुपयनि जी करप्शन जो इंकशाफ। खुराक खाते जे इख़्तियारनि 10 करोड़ 34 लख रुपयनि जी कड़क जी रक़म में खुर्द बुर्द वारे मामले जी जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। इख़्तियारनि मूजिबि थरपारकर जे फ्लोर मिल्स ऐं चक्की मालिकनि खुर्द बुर्द जी शिकायत कई हुई। दरख़्वास्त गुज़ारनि इल्ज़ाम हयो त साल 2024 में खुराक खाते जे आफिसरनि ऐं अहलकारनि गठ जोड़ करे 10 करोड़ रुपयनि जी करप्शन कई। फ्लोर मिल्स ऐं चक्की मालिकनि जे नाले ते कूड़ा बैंक चालान ज़ाहिर करे करप्शन कई वई। खुराक खाते मीरपुर ख़ास डिप्टी डायरेक्टर खे समूरे मामले जी जांच करे हिकु ॾींहं में रिपोर्ट पेश करण जी तयार कई।

मयो त साल 2024 में खुराक खाते जी आफिसरन ऐं अहलकारन गठजोड़ करे 10 हिंदुअन जे रूहानी पेशवा सुन्नत साईं साध राम जो मड़े सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुचण बाद एयर एम्बुलेंस ज़रिए सखर आंदो वियो। तर्जुमान धड़की दरबार जो चवण आहे त सन्नत साईं साध राम जो आख़िरी रस्मूं सुभाणे सुबुह 10 वगे धड़की दरबार में अदा कयूं।

नौ दबालो भरसा गुजरियल ॾींहं खां गुम थियल ॿिनि ॿारनि जा लाश घर जी पेटीअ मां हथ ॻोठ ख़ान मोहम्मद जिस्काणी में मासूम ॿाड़ी मुर्क ऐं ॿारो जमील सोमाल काल शाम खां गुम हुआ। पुलिस जो चवण आहे ॿिन्ही ॿारनि जा लाश घर जी पेटी मां मिलिया आहिनि। मामले जी वधीक जांच कई पई वञे। सांगड़ वेझो भाउ कार ऐं तहमत हणी हिकु हफ़्तो अॻु पढ़ियल भेण खे कुआड़ियूं हणी क़तल करे छॾियो। नओं ॻोठ में जवाबदार 26 सालनि जी सुमरी कुंडाणी खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त दादी जी हफ़्तो अॻु शादी थी हुई। जवाबदार निंड सुतल भेण खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो। मेहड़ वेझो वेशी सिफ्त जवाबदार ॿी शादी खां रोकण तां पंहिंजे 13 वरियनि जे पुट खे कुही क़तल करे छॾियो। ॿिनि ॿारनि खे सदन ॾाॾे बचाए वरितो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ उमीद देरो में जवाबदार अब्दुल रज़ाक मेमण पंहिंजे पुट मोहम्मद अली मेमण खे मस्जिद में वठी वञण बाद कुही क़तल करे छॾियो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। ऐं पाकिस्तान खे बंग्लादेश हथां लाॻीतो ॿी टेस्ट मैच में बि शिकस्त। बंग्लादेश पारां ॾिनल 437 रन्स जो हदफ पुठियां डोड़ंदड़ पाकिस्तानी टीम 358 रन्स ठाहे आउट थी वई। क़ौमी टीम पारां मोहम्मद रिज़वान 94, शान मसूद ऐं सलमान अली आगा 71 रन्स ठाहियूं। बंग्लादेश जे तेजल इस्लाम 6 विकेटूं वठी टीम खे कामयाबी ॾियारी।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर
1: का। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
2: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड मजबूत तने लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: लेट्स बिगिन द शो। जी हाँ, केटीएम पेश करे तो सिंध जो सब का वो गेम शो होश जमालो हवाओं के शहर हैदराबाद आई हैदराबाद के दिल अब्दुल्ला मॉल हैदराबाद में भरपूर एंटरटेनमेंट सा गड लातादाद इनामात जेकर में आए।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: ईरान अमेरिका जी वेड़ के रोकण जरूरी है, एक तरफी गुंडागर्दी है, तारीख तब्दील करने वालों कदम की मुखालफत करनी पवी। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाकात दौरान इतफाक। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात दौरान चीनी सदर गलंदे चुवाए त विच ओवर की सूरतहाल अहम मोड़ ते है, छिकताण की बीहर शुरूआत कें भी सूरत में कबूल न है, मौजूदा हालत में गाल वही अहमियत रखन थी। प्यूटन आलमी सतह से इस्तकाम बरकरार रखने लाए चीन ए रूस जो किरदार अहम है। चीनी ए रूसी सदर विच में मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्क विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गडियल पधराई से सही भी कई हुई। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी एक भेरों बीहर ओचितो तेहरान पहुंची वो। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी IRGC जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी कुछ डी अग भी तेहरान पहुंची। ईरानी सदर मसूद पशिकान बजई वजीर अब्बास इराकची ए बेन ईरानी इख्तियार से मुलाकात कई हुई। ईरान के हाने वडो लोडो इंदो, वक्त भी घट अतस, कुछ दिन में हमलो करे सकूं था, थी सके तो जुम्मे या छंछर ते ईरान वता हमलो करे छू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चाहे त सूमर वारे दिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ कलाक बचो हो। सऊदी कतर UAE ए बेन मुल्क की दरख्वास्त हमलो मुलतवी कयो। जंग में वाप सरप्राइज मिलंदा, जंग में जो सीखो है उन मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल डींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी जो चवण है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बणाए पेश कर रो है, असा कें भी जारियत जो मुकाबलो कर लाए तैयार आयो। अमरीकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अखबराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस है त ईरान से गाल में अहम अखबराई थी है, ईरान वायदो कर चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाली शर्त हथ खणो पवो, ये न थो तो जंग बीहर शुरू कंदी। अमरीकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी खत्म करण ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो। परदेही मीडिया मूजिब ठहराव 47 वोटन के मुकाबले में 50 वोटन से मंजूर थो। जंग सबब अमरीका समेत सजी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। परदेही मीडिया मूजिब सेनेट बाद ठहराव अमरीकी ऐवान में पेश कर वो, हलदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है, यो भी इम्कान जाहिर किया पे वे त ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमरीकी ईवान में भी मंजूर कर वो। मनशिया डीलर पिंकी के मामले ते एडिशनल IG कराची ए टंडे मस्ती में नारी खालदार रुबीना चांडियो के कतल मामले ते DIG सकर सेनेट के घरू मामलन बाबत स्टैंडिंग कमेटी आडो पेश। कराची पुलिस चीफ आजाद खान मूजिब मनशिया डीलर पिंकी खिलाफ 2021 का 26 ताई 21 गिरफ्तारी दौरान पिंकी के घर में कुकेन भी हथ आई। पिंकी के 16 बैंक अकाउंट जो पतो लगायो, एक अकाउंट में 90 लाख रूपया मिलिया। DIG सकर नासिर आफ्ताब कमेटी के ब्रीफिंग दींदे त नारी खालदा उर्फ रुबीना चांडो के कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार कया है। नारी पसंद पढ़ने लाए घरा निकरी वही हुई, जैखा पोए केस वापस कराए जिरगे में कतल जी फतवा जारी कई वही। केस में अहम कलम शामिल कया व्या जवाबदार सजा का नथा बची सकन। मलेशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के प्रोटोकॉल डेण वाले मामले की जांच

मुकम्मल एसएसपी सिटी अली हसन एसएचओ गार्डन एसआईओ जिम्मेवार करार। रिपोर्ट में जाना वो है एसएचओ गार्डन हरीफ सियाल एसएसपी सिटी की हिदायतन से पिंकी के पुलिस प्रोटोकॉल दिनो। पिंकी के थाने में खाधो मेकअप कपड़ा ए दवाओं फराम क्यों। पिंकी की गिरफ्तारी का अदालती पेशी तई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ए डीआईजी दखण के अणजान रखो वो। पिंकी थाने से मौजूदगी दौरान नशे की हालत में हुई। पिंकी के एसएचओ पेंजे ऑफिस में खास मेहमान जिया बिहारियो। इन्हीं में पैसन की डेती लेती बाबत भी गाल थी। इन मामले की जांच थे घुर्ज। ईद उल अज़हा ते टे ॾींह मोकल जो ऐलान। 26, 27, 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंजूरी सां काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: किरु शोक हो ना तो के मुझे रो पाए तैयार थियण जो।
4: तू आज भी हसी
3: थोरो पाए तो देखार।
5: ना मां मां थकी पई आया।
3: ना पुटा ही थक ना है, रत जी कमी आ है। दिसता केडो ना फिको थी वे आए तुझो चेहरो।
5: छा कया मां,
3: 6 महीना थी वे इन पुट, तू उम्मीद साही अई हाणे वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी। कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट, तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से। उनन साही त खून ठांदो है, इनसा न तोखे कुछ थिंदो अनई बा रखे। पुट हाणे तू मां थण वाली आही, जो ख्याल रखना बेन खां पे वधिक जरूरी है।
4: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है।
6: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।

0: चिकन है तो ना के रोज अंडा खा रहे जाओ मंझन जी मानी में सूफ दी जाओ तो जियो स्कूल में मुआगुर थकेला थकेला ना हो जाए।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो वियो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सॼो ॾींहुं ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही आ। पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न, मुंहिंजो बि इहो ई हाल हो।
1: ख़बर नाहे तव्हां ही सभु कुझु कीअं कयो नानी, मां त एतिरो थकी थी पवां, छा कयो हो त।

0: सोचण जो वक्त अचे त ॿ साल तू सोचजे बसि इहा ॻाल्हि कमींदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: सुनिए

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प डील न कर जी सूरत में ईरान मथा हमलन जी बीहर धमकी दई छी। डोनाल्ड ट्रम्प चाहे तो ईरान वट वक्त घट है, कुछ दिन में हमलो कर सकूं था, थी सके तो जुम्मे या छंछर से ईरान मथा हमलो कर छू। ईरान फोरी डील न कई तो उनका नतीजा तमाम घना खतरनाक हूंदा। ईरान ए अमरीका की वेड़ के रोकण जरूरी है। एक तरफी गुंडागर्दी ए तारीख के तब्दील करण वारन कदमन की मुखालफत करनी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ए रूसी सदर प्यूटिन विच में मुलाकात दौरान इतफाक। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात दौरान चीनी सदर गालाइंदे विच ओभर की सूरतहाल अहम मोड़ पे है। चिकताण की बीहर शुरूआत कें भी सूरत में कबूल ना, मौजूदा हालत में गालियों वही अहमियत रखन थी। प्यूटिन आलमी सतह से इस्तेकाम बरकरार रखने लाय चीन ए रूस जो किरदार अहम है। चीनी ए रूसी सदरन विच में मुलाकात दौरान बिन्ही मुल्क विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गडियल पधराई से सही भी कई वह। जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलता। जंग में जो सीखो है इन मदद से हैरत अंगेज रद्देअमल डींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जो रद्देअमल। ईरानी नायब परदेही वजीर कासिम वरीब आबादी जो चवण है तो अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है, असा कें भी जारियत जो मुकाबलो कर तैयार आयो। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी एक भेरों बीहर ओश्तो तेहरान पहुंची वो। ईरानी हमनसब सिकंदर मोमिनी आईआरजेसी के सरबरा जनरल अहमद वहीदी से अहम मुलाकातू। मोहसिन नकवी कुछ दी अग भी तेहरान पहुंची। ईरानी सदर मसूद पेशिकान पदई वजीर अब्बास इराकची बेन ईरानी इख्तियारन से मुलाकातू कई हुई।
1: सोलर ए बैटरी बाकी तमाम पखन के मुकाबले में
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो ले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खामी को ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बाकर कालीबाग जो अर्द्यमल ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद्दमल ॾींदासीं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकची जो रद्दमल। ईरानी नायब परदेही वज़ीर कासिम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जूं ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जे ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान, पासदारन इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नकवी जो हफ़्ते अंदर तेहरान जो बियो दौरो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की आला सतह वफद की मुलाकात। चीनी वफद की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन की अगवाणी में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ए चीन विच में तारीखी ए स्ट्रेटेजिक सहकार से बदल भाईवारी के साराईदे पाकिस्तान विच चीन विच में स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की बुनियाद से दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तों कायम है। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के पाक चीन लागापन की 75 सालगिरह जो वाधायूं डिन्हीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

मेहनत होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: सिंध जो GFM नेटवर्क या है सिंध जी दिल जी मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: ये

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं काज।
2: अब आप सुनेंगे KTN न्यूज।
3: मीडिया मौजूद मसवदे के हतमी शक्ल देने लाए पाकिस्तान की अहम शख्सियत सुभाणे तेहरान पहुंची ईरानी क्यादत से मुलाकात कंदी। ईद उल अजाबाद इस्लामाबाद में गालियन के बेदौर दौरान जंगबंदी वायदे ते सही थियण जो इम्कान है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत के सुभाणे वाली तेहरान के दौरे बाद ईरान ए अमरीका विच में हतमी वायदे के मसवदे जो ईरान के दौरे ते तेहरान पहुंतल वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी क्यादत से अहम मुलाकातू। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेशिकियान पासदारन इनकलाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी ए ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी से धारदार मुलाकात कई। मोहसिन नकवी कुछ डी पैरिया भी ईरान वो हो। ईरान ए अमरीका की वेड़ के रोकण जरूरी है। एक तरफी गुंडागर्दी ए तारीख के तब्दील करण वारन कदमन की मुखालफत करनी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ए रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाकात दौरान इतफाक। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात दौरान चीनी सदर गलाइंदे विच ओभर की सूरतयाल अहम मोड़ ते है। चिकताण की बीहर शुरूआत कें भी सूरत में कबूल न है। मौजूदा हालतन में गालियों वड़ी अहमियत रखन थियं। प्यूटन आलमी सतह से इस्तेकाम बरकरार रखने लाय चीन ए रूस जो किरदार अहम है। चीनी ए रूसी सदरन विच में मुलाकात दौरान इन्हीं मुल्कन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गडियल पधराई ते सहयोग भी कई वयू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प डील न करण की सूरत में ईरान वता हमलन की बीहर धमकी दई छी। डोनाल्ड ट्रम्प है ईरान वट वक्त घट है कुछ डीहन में हमलो कर सकूं था। थी सके तो जुम्मे या छंछर ते ईरान वता हमलो कर छ्यूं। ईरान अवाम की हालत तमाम घनी खराब है। उ फौरी डील चाहन था अपना हर मुस्के कें भी वक्त खोले सकूं था पर उन हवाले का तकड़ न है। चीनी सदर जो सुठो दोस्त है चीन जो दौरो भी तमाम घणो कामयाब रहो। दुश्मन की चालाकियन में जाहिर थे तो जी गोला में आन वधंदर माशी दबाव ए घेराव ईरान के हथियार पिटकर ते मजबूर न तो कर सके। सदर ट्रम्प की धमकियन ते ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ जो रद्द अमल। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है तो जंग में वापसी की सूरत में अमरीका के घणा सरप्राइज मिलन्दा। जंग में जो सिक्यू आए उन मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल दींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदेही वजीर काजिम फरीबाबादी जो चवण है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। अस कें भी जारियत जो मुकाबलो कर तैयार आय। वजीर अजम शहबाज शरीफ से चीन के आला सतही वफद की मुलाकात। चीनी वफद की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन की अगवाणी में वजीर अजम

0: सां मुलाकात कई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं चीन विच में तारीख़ी ऐं स्ट्रेटेजिक सहकार ते वधल भाईवारी खे साराहींदे चयो त पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटेजिक हमआहंगी जी बुनियाद ते दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तो क़ाइम आहे। वज़ीर आज़म चीनी सदर खे पाक चीन लाॻापन जे 75वीं सालगिरह जो ईरान ऐं अमरीका विच में तकरार जा ख़िते ते नाकारी असर पइजी रहिया आहिनि। मईशत ऐं तवानाई वारा मामला दबाव जो शिकार आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जी लाहौर में मखदूम अहमद जी रिहाइशगाह ते ॻाल्हि ॿोल। बिलाल भुट्टो चयो त अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जो किरदार वाखाण जोगो आहे। तकरार जल्द ख़त्म थियणु घुर्जे।
1: जब कोर्ट में पेश हुई है तो उसने वो वहां पे ये बात की है और वो जो कि बहुत जलाक सी मुजमा है तो उसने ये कहा सिर्फ जो रिमांड को डिनाई करने के लिए ताकि उसको रिमांड ना उसका ना मिले कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी जो चीज उस रिमांड में है तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल बेस्टेस बात है। पुलिस की तफ्तीश अभी देखिए शुरू हुई है, उनके नाम आए हैं लेकिन मैं बिल्कुल प्री मेच्योर कोई बात करना नहीं चाहता। कोर्ट में पेशी के दौरान जो बेजाबतियां हुई उसके ऊपर हम एक एसएसपी के खिलाफ एक्शन लिया, एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया, एसआईओ के खिलाफ एक्शन लिया, आईओ के खिलाफ एक्शन लिया और गवर्नमेंट की इसमें रिजॉल्व है। हमें किसी तरफ से भी किसी भी तरह से प्रेशर नहीं और ना ही इसमें प्रेशर देना चाहिए। जीआईटी में कोई और उसके हेड है तो मेरा ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। वो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चलेगी। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मूवमेंट की है जिसमें उसको एक पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी तो उसमें कई ऐसी बेजाबतियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
0: मलेशिया जी रहर अनमोल उर्फ पिंकी जी गिरफ्तारी ऐं टंडे मस्ती में कार ऐं तोहमत हणी कतल कयल खालदा चांडो जे कतल वारनि मामलनि ते पुलिस अमलदारनि जी सेनेट कमेटी आॾो पेशी। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान घरू मामलनि जी स्टैंडिंग कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे चयो त पिंकी जे नेटवर्क में सिंध ऐं पंजाब पुलिस अहलकार बि मुलविस आहिनि, हुननि सभिनी ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। पिंकी कंहिं बि सियासतदान जो नालो नाहे वरितो, हुन बनीगाला जो नालो रुगो सियासी कवर अप लाइ वरितो। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब कमेटी खे ॿुधायो त नारी खालदा चांडियो पसंदि पढ़ण लाइ घरां निकिरी वई हुई। केस वापसि कराए जिर्गे में कतल जी फतवा जारी कई वई। कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि, को बि सज़ा खां बची न सघंदो। कमेटी चेयरमैन समीना ज़हरी चयो त गैरत जे नाले ते औरतुनि खे कतल करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। मनीषा डीलर अनमोल उर्फ पिंकी खे प्रोटोकॉल ॾियण वारे मामले जी जटन ऐं एसआईओ ज़िमेवार करार। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल एसएसपी सिटी जी हिदायतनि ते पिंकी खे पुलिस प्रोटोकॉल ॾिनो। पिंकी खे थाणे में खाधो, मेकअप, कपड़ा ऐं दवाऊं फराहम कयूं। पिंकी जी गिरफ़्तारी खां अदालती पेशी ताईं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं डीआईजी ॾखण खे अणॼाण रखियो वियो। पिंकी थाणे ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत पिंकी खे एसएचओ पंहिंजे ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती लेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। इन मामले जी वधीक जांच थियणु घुर्जे। इस्माइली बिरादरी जो रुहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं ख़ातून नेवाला असफा भुट्टो ज़रदारी संदसि आजियां कई। प्रिंस रहीम आगा खान जे मान में ऐवान सदर में आजियाणो केस गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू सुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे।